ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। अब आज की बाकी खबरें समाप्त फरमाइए। अमरीकी हुकूमत ने कहा है कि इसराइल और लबनान ने जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया है, ताहम ईरान की सिपाह पासदारान इनकलाब इस्लामी IRGC ने एक ताज़ा इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि जब तक इसराइली अफवाज खित्ते से वापस नहीं जाती तब तक अमन कायम नहीं हो सकता। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने जुमेरात को इस बयान की खबर दी। IRGC ने कहा कि इसराइल अपने हमले हर सूरत बंद करे और लबनान के मकबूजा इलाके खाली कर दे। ईरानी हिमायत याफ्ता शिया मुस्लिम ग्रुप हिजबुल्ला के रहनुमा नईम कासिम ने जंगबंदी पर कड़ी तनकीद की है। उन्होंने कहा कि जब तक कब्जा जारी रहेगा मुज़ाहमत जारी रहेगी, और उन्होंने लबनानी हुकाम पर जोर दिया कि वो इसराइल के साथ मुज़ाकरात ना करें। इस ग्रुप ने जुमेरात को एक और हमला करने का दावा भी किया है। इसराइल के वज़ीर दिफा इसराइल कार्ट्स ने हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का अहद किया है और कहा है कि फ़ौजें जनूबी लबनान में मौजूद रहेंगी। लबनानी टेलीविज़न ने बुध के रोज़ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराकची का इंटरव्यू नशर किया है। उन्होंने कहा कि तेहरान अब भी वाशिंगटन के साथ बातचीत में मसरूफ़ है। उन्होंने ज़ोर दिया कि अमन माहदे में लबनान समेत तमाम महाज़ों पर लड़ाई का ख़ात्मा शामिल होना चाहिए। एक जापानी पब्लिक प्राइवेट काउंसिल ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाले तवील फासले के ट्रक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की तामीर की पॉलिसी का ऐलान किया है। इस नौ तश्कील

0: शुदा कौंसल ने जुमेरात को अपने पहले इजलास में इस मंसूबे की नकाब कुशाई की। इसके मेंबरान सनत, ट्रांसपोर्ट और माहौलियात की वजारतों और गाड़ी साज व मालियाती इदारों जैसे वसी शोबों से ताल्लुक रखते हैं। वो शिमाल मशरक में फुकुशिमा और जुनूब मगरब में फुकुओका प्रिफेक्चरों के दरमियान 1300 किलोमीटर तवील ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाने का मंसूबा तैयार कर रहे हैं। इसमें कार्बन फ्री हाइड्रोजन से चलने वाली फ्यूल सेल गाड़ियां इस्तेमाल की जाएंगी। शरीक कंपनियां हुकूमत की सब्सिडी के साथ अगले 10 सालों में एक्सप्रेसवेज और दीगर अहम सड़कों के साथ 30 इजाफी हाइड्रोजन स्टेशन बनाएंगी। मंसूबे में तकरीबन 1500 फ्यूल सेल ट्रक इस्तेमाल किए जाएंगे। मगरबी जापान के हिमेजी शहर के एक चिड़ियाघर में बच्चों को हिप्पो के दांतों की सफाई देखने का एक अनोखा मौका फराहम किया गया। ये तकरीब 4 जून को शुरू होने वाली दांतों और मुंह की सेहत को बेहतर बनाने के लिए एक हफ्ते पर मुहित सालाना कौमी मुहिम का हिस्सा थी। तकरीबन 30 मकामी नर्सरी स्कूल के बच्चों ने हिमेजी सिटी चिड़ियाघर में जुमेरात को एक मादा हिप्पो किबोको के दांतों की सफाई का अमल देखा। ये जानवर 42 साल का है और इसकी लंबाई तकरीबन 2.5 मीटर है। सबसे पहले एक डेंटल हाइजीनिस्ट ने वजाहत की कि डोनट्स और चॉकलेट जैसी मिठाइयाँ आसानी से दांतों में कैविटी पैदा कर सकती हैं और उन्होंने दांतों को दुरुस्त तरीके से ब्रश करने का तरीका दिखाया। बच्चों ने फिर हिप्पो को उसकी पसंदीदा खुराक सेब और गाजरें खिलाईं। खाने के बाद एक रखवाले ने 1 मीटर से ज़्यादा लंबे खसूसी टूथब्रश का इस्तेमाल करते हुए जानवर के दांतों की सफाई का अमल शुरू किया। हिप्पो का मुंह खुलने और उसके दांतों की सफाई के दौरान बच्चे उसे दिलचस्पी से देखते रहे।
1: और सामिन, आखिर में अहम खबर का खुलासा। जापान की वजारत सनत का कहना है कि मुल्क में तवानाई की मुस्तहकम फरहमी यकीनी बनाने में मदद के लिए 2040 की दहाई तक 5 पुराने जौहरी रिएक्टर्स को दोबारा तामीर करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुईं।

0: तान, आप जापानी जानती हैं?
1: ताम कहती है,
2: स्कोशी दाके देस।
0: सिर्फ जरा सी।
2: राजियो दे बेंक्यो शिमाश्ता।
0: रेडियो से सीखी है।
1: यूकी मुतासिर होकर कहता है,
3: सुगोई देस ने।
0: वाह, बहुत खूब।
1: ताम उसे अपनी एक ख्वाहिश के बारे में बताती है।
2: निहों ए, इत्ते मिताई देस।
0: मैं जापान जाना चाहती हूँ।
1: यूकी खुश होकर कहता है,
3: ज़ेश किते कुदासाई।
0: जरूर आइए।
3: बुक गा अन्नाई शिमास्यो।
0: मैं आपको सैर कराऊंगा।
1: तो ये वो दोस्त है जिससे ताम दोबारा मिलना चाहती है, मौसीकी का तालिब इल्म यूकी।
0: देखें ये मुलाकात होती है या नहीं, लेकिन फिलहाल आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं।
2: कोनिचिवा, वतासी वा ताम देस।
3: आ, बुक यूकी देस। ताम सान, निहोंगो गा देकिरु देस ने।
2: स्कोशी दाके देस। ラジオで勉強しました。
3: すごいですね。
2: 日本へ行ってみたいです。
3: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
1: आज के सबक का कलीदी जुमला है, मैं जापान जाना चाहती हूँ।
2: 日本へ行ってみたいです。
1: अगर आप इसे याद कर लें, तो आप भी अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं।
0: और अब आज के कलीदी जुमले की तशरीह, निहोन के मायने है जापान। इसके बाद का हर्फ जार ए समत को जाहिर करता है और इत्ते मिताई देस जाना चाहती हूँ। अब आज का नुक्ता, ख्वाहिश के इजहार के लिए फेल की ते शक्ल के बाद मिताई लगाया जाता है।
1: फेल जाना यानी इकु की ते शक्ल है इत्ते, तो जाना चाहती हूँ के लिए कहा जाएगा इत्ते मिताई। ठीक है नानवर साहब?
0: जी बिल्कुल ठीक। और कलीदी जुमले में आखिर में देस जुमले को शाइस्ता बनाने के लिए है। फेल की ते शक्ल बनाने का तरीका सबक नंबर 7 में बताया गया था। प्रोग्राम की वेबसाइट पर कई फेल ते शक्ल के साथ मौजूद हैं, आप वहां से मजीद मश्क कर सकते हैं।
1: अच्छा अनवर साहब एक बात बताइए, जाना चाहती हूँ के लिए पिछले सबक में तो था इकिताई देस, तो ताई देस और ते मिताई देस में क्या फर्क है?
0: हीरा आपने बहुत अच्छा नुकता उठाया है। कोई काम करने का इरादा जाहिर करने के लिए ताई देस का इस्तेमाल किया जाता है जैसा कि पिछले सबक में था, लेकिन अगर आप किसी ऐसे काम की ख्वाहिश जाहिर करना चाहें जो आपने पहले कभी ना किया हो और वो ख्वाहिश पूरी होने के इम्कानात भी ज्यादा ना हो, तो आप ते मिताई देस इस्तेमाल करेंगे, यानी करके देखना चाहता हूँ।
1: जी समझ गई। और अब वक्त हुआ है मश्क का, तो सामेइन सुनिए और दोहराइए।
4: इत्ते मिताई देस, निहों ये इत्ते मिताई देस।
1: जी सामेइन, यकीनन आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा।
0: अब जापान में कुछ करने की ख्वाहिश पर मबनी एक मुख्तसर मकालमा सुनिए।
5: निहोन दे नानी गा शिताई देस का?
6: सो देस ने, सुमो वो मिते मिताई देस।
0: और अब इस मकालमे की तशरीह,
5: निहोन दे नानी गा शिताई देस का?
1: जापान में क्या करना चाहती हैं?
6: सो देस ने।
0: ये जवाब सोचने के दौरान कहे जाने वाले अल्फाज हैं।
6: सुमो वो मिते मिताई देस,
1: मैं सुमो देखना चाहती हूँ।
0: सुमो यानी जापानी कुश्ती और मिते मिताई यानी देखना चाहती हूँ, ये दरअसल फेल मीरू यानी देखना की ते शक्ल मिते के बाद मिताई लगाकर बनाया गया है।
1: तो सामेइन मुकालमा सुनिए और जवाब दोहराइए।
4: निहोन दे नानी गा शिताई देस का? सो देस ने, सुमो वो मिते मिताई देस। सो देस ने, सुमो वो मिते मिताई देस।
0: चलिए अब कुछ ऐसी मिसालों के साथ मश्क करते हैं जिनकी आपको जापान में करने की ख्वाहिश हो सकती है। मसलन आप कोहे फूजी पर चढ़कर देखना चाहते हैं, तो ये बात आप किस तरह कहेंगे? कोहे फूजी पर चढ़ना की जापानी है
4: फुजीसान नी नोबोरु। फुजीसान नी नोबोरु।
0: फेल चढ़ना है नोबोरु और उसकी ते शक्ल है
4: नोबोत्ते। नोबोत्ते।
0: तो सामेइन कोशिश करें।
6: फुजीसान नी नोबोत्ते मिताई देस।
1: उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमला बना लिया होगा।
0: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज का जुमला ताम ने उस वक्त कहा था जब यूकी ने हैरत से कहा था कि आप जापानी जानती हैं, इसे इसी तरह याद कर लें।
2: स्कोशी दाके देस।
0: स्कोशी के मायने हैं कुछ या जरा, और दाके यानी सिर्फ। चुनांचे स्कोशी दाके देस का मतलब है सिर्फ जरा सी। अगर कोई आपकी जापानी जबान की तारीफ करे और आप जवाब में ये जुमला

0: कहें तो उम्मीद है कि वो शख्स आपके साथ आसान जापानी बोलेगा।
1: अब ये जुमला मुख्तलिफ अफराद की आवाज में सुनिए। अब आप इसे दोहराइए।
0: अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनिए, उस हिस्से पर खुसूसी ध्यान दें जिसमें ताम अपनी ख्वाहिश का इजहार करती है।
2: こんにちは。私はタムです。
3: あ、僕ユウキです。タムさん、日本語ができるんですね。
2: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
3: すごいですね。
2: 日本へ行ってみたいです。
3: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
4: ハルさんの知恵袋。
1: अब हारूसान की जंबील का कॉर्नर। आज का मौजू है जापान की सुमो कुश्ती।
0: सुमो को जापान का कौमी खेल भी कहा जाता है। हीरा, आपने कभी ये कुश्ती देखी है?
1: हाँ जी, टीवी पर देखी है। पहलवानों का अपने पहाड़ जैसे जिस्मों को टकराने का मंजर काबिले दीद होता है।
0: दो पहलवानों की इस कुश्ती में मुखालिफ को अखाड़े में जमीन पर गिरा देने या अखाड़े से बाहर धकेल देने वाला पहलवान कामयाब करार पाता है। सुमो के मुकाबले साल में 6 बार ताकत वाले महीनों में मुनाकिद होते हैं। ये मुकाबले टोक्यो, ओसाका, नागोया और क्यूशू में होते हैं।
1: लेकिन मैंने सुना है कि टिकट खरीदना मुश्किल होता है।
0: जापान सुमो एसोसिएशन की वेबसाइट पर इससे मुतालिक मालूमात अंग्रेजी में मौजूद है। अगर आप मुकाबला देखने के लिए टिकट ना खरीद सकें तब भी हेया कहलाने वाले मुख्तलिफ अखाड़ों में सुमो की मश्क देखने जा सकते हैं, जहाँ पहलवान अपने अखाड़े के उस्ताद की ज़ेर निगरानी मश्क करते हैं। बाज़ अखाड़ों में मद्दाहों को सुबह की मश्क देखने की सहूलत फराहम की जाती है।
1: अच्छा, फिर तो मैं मश्क देखने जरूर जाऊंगी।